वो मुझे पता है इस गोली के बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, और मैगजीन में मुख्तलिफ लोगों ने उसे मशवरे दिए जो कि अपने दानिश्वर लोग हैं, और यह सवाल उठा कि यह फसाद आया कहां से, किसने गवर्नमेंट को कहा उनकी गलती है, किसने कहा बाप की गलती है, किसने कहा मां की गलती है, किसने कहा मुआशरे की गलती है, किसने कहा कानून की गलती है। गलती किसकी है, क्या ख्याल है किसकी गलती है? मेरे भाइयों, आज जिस मुकाम पर औरत मौजूद है, आप यह ना समझें कि ये शुरू से ऐसे गिरे हुए थे। इनके बिगड़ने में 200 साल लगे हैं। ये आज जो मैं ये बयान कर रहा हूं, ये स्टैटिस्टिक्स जो हैं, ये इस चौराहे पर औरत को खड़ा कर दिया, 150-200 साल लगे हैं इनको। ये बीमारी आहिस्ता आहिस्ता हमारे माशरे में भी शुरू हो रही है, बेपर्दगी आम आहिस्ता आहिस्ता हो रही है। यह ना कहें कि हमारे पास दीन इस्लाम है जो हमें रोकेगा। अगर दीन इस्लाम को हम समझते तो पहला कदम ही ना उठता बेपर्दगी का। आज वो वक्त दूर नहीं है कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे, हमारे औरतों को महफूज करे, कि नऊज़ बिल्ला वो वक्त आने वाला है। अगर आज हम अपनी बच्चियों को, बेटियों को, माओं को, बहनों को नहीं रोकेंगे, उनको शरीयत की तालीम नहीं देंगे, तो वो वक्त दूर नहीं जब हमारे औरतों भी अल्लाह ना करे कि उस चौराहे पर खड़ी हो जाए। आज लोग कहते हैं क्या उल्टी सीधी बातें करते रहो, तो लोगों को, औरतों को परेशान करते रहते हो। ये हकीकतें हैं, उनके घर घर ना रहे, वो खंडर बन चुके हैं। अगरचे हमें वो सामने से खूबसूरत नजर आते हैं, लेकिन अल्लाह की कसम अंदर से वो खंडर बन चुके हैं, टूट चुके हैं उनके घर, कोई फैमिली लाइफ नहीं उनकी। मुस्कुराते हुए खुश नजर आते हैं हमें, लेकिन उनके दिल का क्या हाल है, काश वो आपको बता सके। कितनी माएं हैं जो चीखती होंगी और पुकारती होंगी दुनिया में ये आवाज बुलंद करते हुए कि मेरी बच्ची को कोई बचा सकता है तो बचाए इस बुराई से। और ताज्जुब की बात यह है कि ऐसा मसला चला लंदन में, तो एक ऐसी कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक पॉप था क्रिश्चियन, उसने कहा इसको अगर रोकना है ना इस रास्ते को, तो शरीयत के लाभ को क्यों नहीं अपनाते हो, इस्लामी शरीयत की बात कर रही है, एक क्रिश्चियन पॉप कह रहा है। जमीन और आसमान को एक कर दिया वहां पे। और दुख की बात तो यही, जो वहां पर जो बाज मुसलमान लोग बैठे हुए थे, सबसे पहले मुखालफत उन्होंने की, उन्होंने कहा तुम ये क्या बात कर रहे हो, इसी शरीयत के लाभ से अपने मुल्कों से भागे हुए हैं, असाइलम दिया हुआ हम लोगों ने यहां पर तुम्हारे मुल्क में रहते हैं, फिर वही शरीयत इस मुल्क में अब तुम नाफिज करना चाहते हो। कलमा पढ़ने वाले मुसलमान, नाम अहमद है, खालिद है, मोहम्मद है, ये नाम है उनके, लेकिन जब शरीयत का नाम आता है, शरीयत के नफाज का नाम आता है, तो लरज उठते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि वो अपने सर को अपने रब के सामने झुकाना नहीं चाहते। वो जानते नहीं कि अपने रब के सामने सर कैसे झुकाया जाता है। बहरहाल उस पादरी को मुअत्तल कर दिया गया, सजा थी उसकी, तुमने शरीयत की बात क्यों की। और यह बात राइज हो गई कि उस शख्स ने यह कहा कि उसकी अल्फाज गलत कोट किया गया, कि पूरी शरीयत का नफाज होना चाहिए इंग्लैंड में, हालांकि उसने सिर्फ औरत के ताल्लुक से बात की थी। और उन्होंने कहा कि हाथ काटने की सजा, कत्ल करने की सजा, ये सजाएं कहां हैं, वो तो इसको मानते नहीं है। उसने कहा मैंने ये नहीं कहा कि हाथ काटे जाए चोर के, मैं तो यह बात कर रहा था, मेरी बात गलत तुम लोगों ने कोट किया है। बहरहाल उसकी यह सजा थी बेचारे की, हक बात कोई तस्लीम नहीं कर सकता, हक कड़वा होता है। वो अब हद गुजर चुके हैं, उनके घर उजड़ चुके हैं, अब उनका निशाना हमारी माएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, ये उनका निशाना है। चाहिए तो यह था कि

कब करेंगे, कब करेंगे? मेरे पास एक मरतब एक मरीज आया, 60 साल की उम्र थी उसकी, कांप रहा है उसके ऐसे हाथ, कांप रहे हैं। उसकी हालत को देख मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जब उसने कहा कि वो जना करके आया है और वो जना कर नहीं सकता था, उसने व्याग्रा की गोली खा के जना किया है इस उम्र में, उसके पांव और हाथ इसे लरज रहे थे बुढ़ापे की वजह से, अब इस उम्र में भी तौबा नहीं की। ये अल्लाह ताला की हिकमत है कि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है उसकी जिस्म की ताकत कम हो जाती है, ताकि अब से इसे अकल आ जाए अब तुम्हारे दुनिया में क्या बचा है, अब तो तौबा कर ले। इसलिए प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसको अल्लाह ताला 60 साल की उम्र दे उसके बाद उसको कोई बहाने नहीं चलेगा, कोई उधर नहीं उसका अल्लाह ताला के सामने, अगर उसने अपने आप को दुरुस्त न किया इन 60 सालों में। बाज़ लोग 60 से भी ज्यादा हैं, वही झूठ वही फरेब वही नाफरमानी है। आप जानते हैं कि जिस दिन हम इस दुनिया में पैदा होते हैं हमारा काउंटडाउन शुरू हो जाता है, जब तक पैदा नहीं हुए तब तो अच्छा है, लेकिन जब दुनिया में आते हैं पहला दिन होता है, दूसरा दिन, तीसरा दिन, पहला साल, दसवां साल, बीसवां साल, ये जो साल हम कहते हैं ये हमारी वो जिंदगी जो गुजर चुकी है और हम मौत के ज्यादा करीब जा रहे हैं, कब्र के ज्यादा करीब होते जा रहे हैं रोजाना। पिछले हफ्ते मुलाकात हुई थी, आज फिर एक हफ्ते में मुलाकात है, हम कब्र के करीब एक हफ्ता ज्यादा हो गए हैं आप जानते हैं, और मौसम के बच नहीं सकते। याद रखो कुल नफ्स ज़ाइक़तुल मौत, और जब वक्त आता है तो एक लम्हा भर भी देर नहीं होती, एक लम्हे एक झटके में जान चली जाती। तो अल्लाह ताला का डर बच्चों की तरबियत और तालीम एक बुनियादी चीज है। अमल, अमल का क्या मेयार है? नबी रहमतुल्लाह अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन अमिल अमलन लैस अलैहि अमरुना फहुवा रद्द, जिसने कोई ऐसा अमल किया जिस पर हमारा अमल नहीं है वो शख्स भी मरदूद है, उसका वो अमल भी मरदूद है, मरदूद है। तो अमल के मेयार क्या है? नबी अकरम सल्लम की इत्तिबा, इसे कहते हैं इत्तिबा सुन्नत। लेकिन यह देखा गया है बाज लोग अहमाल में हद से ज्यादा गुजर जाते हैं, वो ये समझते हैं कि अमल ज्यादा करें बस, अमल की फजीलत को जानना चाहिए, फजाइल अहमाल को अच्छी तरह जान लें, नमाज की क्या फजीलत है, रोजे की क्या फजीलत है, हज की क्या फजीलत है, जकात की क्या फजीलत है, दावत तबलीग की क्या फजीलत है, फजाइल आपको आने चाहिए, मसाइल तो उलमा का काम है तुम्हारा काम नहीं। तो इल्म फवाइल जो है इल्म मसाइल से बेहतर है, फजीलत को जानकर अमल करते रहो। सवाल क्या था? कैसे या क्यों और कितना, क्या बेहतर है दोनों में? नमाज की फजीलत कोई मुसलमान है जो नहीं जानता? कोई मुसलमान, देखिए बेनमाजी भी जानता है कि मुसलमान की फजीलत है, लेकिन ख्वाहिश नफ्स के पीछे दौड़ते हुए वो नमाज नहीं पढ़ता। पूछे बेनमाजी से, कोई भी बेनमाजी हो, क्या वो कह सकता है या जुर्रत कर सकता है कि नमाज की कोई फजीलत नहीं इसलिए नहीं पढ़ता हूं? बल्कि वो कहेगा भाई मैं गुनहगार हूं, मैं नमाज नहीं पढ़ता हूं, लेकिन मैं पढ़ूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जिंदगी चली जाती है, अल्लाह रहम करे। मौत का फरिश्ता इंशाल्लाह मोहलत नहीं देता। आप किसी सदकात और खैरात ना देने वाले जो जकात नहीं दे उनसे पूछे, वो कहते हैं हम बुरा अमल करते हैं, हम जानते हैं कि जकात के क्या फजाइल हैं, क्या फजीलत है, हम जानते हैं, लेकिन देते हैं ख्वाहिश नफ्स की पैरवी की वजह से। बाज़ लोग कहते हैं इसलिए तुम फजाइल की